0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।
1: हाँ।

0: sena.
1: क्या कहा?

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजेपी के आरजे प्रदीप। और इस प्यारी सुबह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एक नया सवेरा, नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन हर दिन की शुरुआत हम एक नए आयाम के साथ, नए काम के साथ करनी चाहिए। और आज भी बहुत सारी बातें होंगी काम से जुड़ी हुई, जी हाँ, करियर से जुड़ी हुई। सुनते रहे रेडियो केदार, बात हिमालय की।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आशा करते हैं कि आज का सूर्यदेव आपके जीवन में नई ऊर्जा, शांति और खुशियां लेकर आया होगा। सुबह की ये बेला जब मन शांत होता है, सबसे उत्तम समय है स्वयं से जुड़ने का, ईश्वर का स्मरण करने का। तो आइए इस मधुर सुबह का आगाज करते हैं उस परम शक्ति का नाम लेकर। तो सुनते हैं यह मधुर भजन।

संगीत में वो शक्ति है जो बिना शब्दों के भी आत्मा से बात कर लेती है। दोस्तों, सुबह का ये समय हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक नई शुरुआत है। हम अक्सर भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने को भी समय देना भूल जाते हैं। आज बस कुछ पल निकालिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि जीवन का हर पल कितना अनमोल है। आज हम बात करेंगे कृतज्ञता की। कृतज्ञता यानी धन्यवाद देना। क्या आप जानते हैं, यह केवल एक अच्छा शिष्टाचार नहीं बल्कि मन की सबसे बड़ी औषधि है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, अच्छी सेहत, सिर पर छत, परिवार का साथ, तो हमारे जीवन से शिकायतें दूर होने लगती हैं। एक बार धन्यवाद देकर देखिए, आपका ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ जाएगा। यही कृतज्ञता हमें ईश्वर के करीब लाती है। तो आज का संकल्प यही है, आज कम से कम 5 चीजों के लिए हृदय से धन्यवाद कहें। इससे पहले सुनते हैं एक और मधुर भजन।

0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
1: दर्शन भिक्षा दे दो मोह दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा? क्योंकि यह समय प्रकृति के साथ जुड़ने का है। यह ध्यान लगाने, पढ़ने या कोई भी रचनात्मक काम करने का सबसे बेहतरीन समय है। लेकिन अगर आप देर से उठे हैं तो कोई बात नहीं, जिस पल जाग जाओ उसी पल को अपना ब्रह्म मुहूर्त मान लो। बस अपनी पसंद का एक अच्छा काम करो। अब सुनते हैं एक और भजन।

0: इन भजनों की लय से हमें जीवन की लय मिलती है। आपने गौर किया, हर भजन में एक सीख छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं अध्यात्म जंगल या पहाड़ों में मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अध्यात्म तो हमें रोजमर्रा के जीवन में भी मिलता है। दूसरों की मदद करना, सच बोलना, प्रेम से बातें करना, यही सबसे बड़ा धर्म और अध्यात्म है। अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना भी एक तरह की पूजा ही है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा ने संत से पूछा, मैं हमेशा खुश कैसे रहूं? संत ने कहा, रोज सुबह आईने में देखो और कहो कि मैं सबसे खुश इंसान हूं। राजा ने रोज ऐसा किया, पर कुछ दिनों बाद फिर दुखी हो गया। वह संत के पास गया। संत मुस्कुराए और बोले, राजा तुम सिर्फ बोलते रहे पर महसूस नहीं किया। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस कृतज्ञ होकर और दूसरों को खुशी देकर उसे जगाना है।
1: अब वक्त हो गया है एक और भजन का, तो सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

सुबह का यह कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, पर ये ऊर्जा, ये शांति इसे अपने साथ पूरे दिन लेकर चलिएगा। याद रखिएगा, हर दिन एक नई कैनवास है जिस पर आपको अपने कर्मों का रंग भरना है, तो आज उसमें प्रेम, शांति और सेवा के रंग भरिएगा। आज का विचार है, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जो वह सोचता है वही वह बन जाता है, इसलिए हमेशा ऊंचा और सकारात्मक सोचिए। मेरी कामना है आपका ये पूरा दिन मंगलमय हो और आप हर काम में सफल हों और अपनों का प्यार आपको मिलता रहे। आज का सफर यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे इसी समय कुछ और भजनों, गीतों और आध्यात्मिक की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: क्या आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारती स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं सिमरन अग्रवाल जी से। सिमरन जी प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं WII में और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं। आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि गंगा के संरक्षण के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सिमरन जी, आपका स्वागत है रेडियो केदार। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है, आखिर में ये है क्या और इससे क्या फायदे होते हैं?
2: अगर हम कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो भी उसमें जलीय जीव पाए जाते हैं या जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
2: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
2: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज्ड होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन होते हैं रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रही है रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है और कैसे आप WIA से जुड़े और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
2: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार नेशन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिकेयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर, उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो एक साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में। देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैं इस कंपोनेंट में दो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है, जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
2: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप, उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहे हैं संरक्षण के लिए या नहीं। तो बट इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, हमारे जो वॉलेंटियर्स रहे थे इन प्रोग्राम्स में वो अपने बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, और जो इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, ये एक अब हम बात करेंगे तो जब सब तक एक साथ नहीं जुड़ते संरक्षण का काम नहीं हो सकता, तो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है हमारा। देन हम लोग के जितने भी ये थे गंगा प्रहरी से, ये खुद से आगे आके हम लोग को बताते कि हम लोगों ने संरक्षण के लिए ये किया, ट्रेनिंग्स करवाई, तो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया सर। और सर अब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है ट्रेनिंग्स, कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गंगा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, गंगा का जो बेसिन एरिया है वो 11 राज्यों से को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
2: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है। जो पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन। सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें, हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं, तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं, और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, तो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशंस होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं, तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है, तो उस बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं अपनी ट्रेनिंग।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी होती है, तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके 6th क्लास तक हो गया, देन हमारे 6 to 8 क्लास हो गया, देन हमारे 9 to 12, तो हमने ऐसे जूनियर, सीनियर, मिडिल, ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है, और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए। सो तो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं, तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में. देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है.
1: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रेरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है. अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
2: जी, अगर हम बात करें स्किल की, तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए. पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ, और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि ये पोचिंग हुई और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है. अगर हम बात करें वेटनेरियंस की, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी जू हिमाचल प्रदेश में. हमने और सिखाया गया क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है, वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू. ऐसे हम लोग जो NCC NSS कैडेट्स हो गए, उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया कि जब वो NCC कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं.
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है, और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं. सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
2: अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंसेस की, तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क. सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज एनहांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे. देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से.
1: जैसा कि आप ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
2: सर, एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ किर्कपैट्रिक मॉडल. सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज़ लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स. सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके लिए कुछ यूज़फुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूज़फुल लगी है ट्रेनिंग है नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज़ किया है नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं. सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है.
1: ये जानना चाहिए कि ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में.
2: सरल शब्दों में अगर हम बताएं, तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन. उनको ये यूज़फुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूज़फुल लगी हैं कि नहीं. उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स. उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया, और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया. उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो ये सब चीज़ों से बेस्ड होता है.
1: मैं जानना चाहूँगा, पहला दिन, फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था, जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे.
2: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था, एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था. तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो बारे में जानना. तब आपको, जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है क्या. क्योंकि अपने एसी रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है. धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी. सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था.
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है. उत्तराखंड में रहते हैं, हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है. तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्य जिसका आप जिक्र करना चाहें?
2: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी, वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही. तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए. सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको. हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उसको अकेले मैनेज करना सारी चीज़ें. अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था. तो मैं वहाँ पे काफ़ी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. तो ये सब चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती जब आप फील्ड में जाते हैं. तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सर.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित 5 राज्य हैं
2: जी,
1: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
2: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. कफनौल में, हम कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग. तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का. स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इंपॉर्टेंट था, बट उस दिन हो गई बारिश. तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे. तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है. बट वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे, क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे. तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी, आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज़ का? हमने कहा बच्चों, आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से. सो उन्होंने बोला नहीं, हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं. तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे जब हमारा स्कूल बंद है. तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को और बुला सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे. तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे उस स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए. तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड, कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते हैं और अटेंड करना चाहते हैं. तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में? क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे. तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
2: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है. तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है. जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है. तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में, उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाथ है तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा, या तो रास्ता बंद है. तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है. तो ऐसे गेम्स हो गए, या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज हैं. तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं. फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से, उन्हें बहुत खुशी होती है. तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम करेगा, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की.
1: जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो सिम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
2: सर हम सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे।
1: तो ये जो क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं, तो ये आप ये जो पूरा तैयार होता है ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप ये WIM ही तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
2: नहीं सर, ये हम WIM ही करते हैं, जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं, गेम्स को खिलाते हैं।
1: ये बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
2: सर उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गए, हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गए, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारी गैंजेटिक डॉल्फिन बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में गैंजेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में, तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं।
1: ये अभी तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
2: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए वो एक टीम बनाई जाती है
1: जी।
2: जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है।
1: तो ये ट्रेनिंग अभी देते हैं या?
2: हाँ, रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है, जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है, तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी, जो रोज गंगा के किनारे जाते हैं, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है, तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है ये हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल।
1: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
2: जी सर बिल्कुल आ रहा है, हमारे काफ़ी सारे डॉल्फिन्स रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर, और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है, इन सब की पब्लिकेशंस भी हैं।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं, और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WIM से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसा आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
2: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं, हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती है। तो यहाँ पे हमारे डब्ल्यू एम एक नेचर ट्रेल है तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी कि नहीं करनी है। तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है और सिमरन जी मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूंगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज।
2: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए। तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का, तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग। आप हर प्रोफाइल गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं। और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुंचे हैं, या आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है। और बात करते हुए सिमरन जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

0: 91.2 पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार।
1: क्या आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारतीय स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
0: रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: केदार की माटी से हिमालय की बात, उत्तराखंड में बने रहिए रेडियो केदार के साथ।
1: क्या आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारतीय स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
0: 91.2 पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार।
2: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार। मैं हूं राजेश पांडे। आज हम अपने स्टूडियो में मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर जी से। आप वरिष्ठ मनोविज्ञानी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो केदार।
3: नमस्ते राजेश जी, और नमस्कार आपके सारे रेडियो केदार के श्रोतागणों को भी जो हमारी वार्ता आज सुन रहे हैं।
2: सर, हम आज जो वार्ता करने वाले हैं उसका विषय है घर का जो वातावरण है वो किस तरह से हम व्यवस्थित करें कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें।
3: आपका प्रश्न तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के परिवेश में इसको देखते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि शायद ये इस पे ध्यान कमी लोग दे रहे हैं, और पेरेंट्स को भी इस पे ध्यान देना है। स्कूल मैनेजमेंट या जो भी उन बच्चों के नियर एंड डियर वन है, उनको इस चीज़ पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए वातावरण कैसा बनाएं जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें, पढ़ाई में वो आगे बढ़ सकें, या जो भी उनका इंटरेस्ट है या एप्टीट्यूड है उसमें, उस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकें। इसके लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी पढ़ाई के बारे में समझने या बच्चों से एक एक्सपेक्ट करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं किस तरह की हैं। अगर किसी बच्चों से हम उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, या पेरेंट ये सोचें कि जो चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए उन चीज़ों को हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे उसमें सफल हो जाएं, और उसका प्रेशर हमेशा देते रहेंगे और ये नहीं ध्यान देंगे कि बच्चों का स्किल किन चीज़ों पे है, बच्चों का एप्टीट्यूड किस क्षेत्र में है, तो बच्चे अच्छा नहीं करेंगे। अब क्या है कि आपका प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके से आप पूछना शायद चाह रहे हो कि बच्चों का ऐसा कौन सा आइडियल इन्वायरमेंट हो या कौन सा ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे वो अच्छा करे पढ़ाई में या शिक्षा के क्षेत्र में, या उनके जो भी खेल कूद या जो भी क्षेत्र में वो जीना चाहते हैं उसमें अच्छा करें। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि अगर कोई किसी एक खेल के स्पर्धा में भी अच्छा करता है तो वो भी सफल माना जाता है, वो भी अच्छा है। लेकिन हमें समझना है कि वो उसका उस खेल में अच्छा करना या उस एप्टीट्यूड में अच्छा करने की कितनी उसकी क्षमता है। अगर क्षमता है तो हमें सब हर तरह का उनको इन्वायरमेंट देना चाहिए। अब घर के परिवेश में अगर देखते हैं तो सबसे पहले बच्चा जब घर जाता है या स्कूल से घर आता है तो पेरेंट को ये तो देखना ही है कि हमें उसको जो फूड दे रहे हैं वो कितना न्यूट्रिशन उसमें है या नहीं है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बच्चों को पेरेंट, क्योंकि वो खुद देर से उठते हैं, रात में टीवी देखते हैं, तो बच्चों को चिप्स, बिस्किट का पैकेट, नमकीन, मूंगफली, और बहुत से बहुत किसी दिन ज़्यादा दया कर दिए तो ब्रेड में जैम लगा के दे दिए, यही दे करके काफ़ी पेरेंट भेज देते हैं बच्चों को। तो क्या ये न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के हिसाब से, जो जिनका ग्रोथ हर दिन हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत है, वो उचित है? तो ऐसे में ऐसे पेरेंट जो हैं वो जिम्मेवार हैं, जो अगर बच्चों का अपना उनके खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको हर दिन आवश्यकता है, उनके शरीर का विकास हो रहा है। एडल्ट के शरीर तो एक विकास का स्तर पहुंच करके स्थिर हो जाता है, लेकिन बच्चों में विकास होता है, हर दिन वो उनको आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को एक न्यूट्रिशियस फूड तो मिलना ही चाहिए, और जब घर में लौट के आते हैं स्कूल से तो उनको खाने के साथ साथ एक उचित इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता होती है। मतलब स्कूल से लौट के आए तो क्या रेस्ट करने के लिए उनके पास कोई समय है? तो वो उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनको रेस्ट तो देना चाहिए। अगर आप शाम को चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, पढ़ाई पे ध्यान दे, खेलकूद में करे, तो कुछ देर के रेस्ट आवश्यक है। अनेक घरों में ऐसा देखा जाता है कि आजकल के घर न्यूक्लियर हाउसेज हैं, छोटे घर हैं, जिसमें या लोग कैपिटल टाउन के नज़दीक या किसी मेन टाउन के नज़दीक आ करके गांव से भी शिफ्ट करके एक घर लेते हैं जिसमें एक कमरा या दो कमरा होता है, उसी में पूरा परिवार होता है। अब उस परिस्थिति में बच्चे को पढ़ना है तो हमें तो प्लान करना है, तो भाई उस परिस्थिति को भी प्लान करनी होगी जी। तो ऐसे में ये लगता है कि बच्चों के पास जो पढ़ाई में अच्छा नहीं करने का कारण बहुत सारे दिखते हैं। तो पहला कारण ये होता है कि उनकी स्टडी हैबिट्स जो होते हैं वो गलत होती है या कमज़ोर होती हैं या उचित नहीं होती हैं। तो स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करना, अब स्टडी हैबिट्स इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि उनके पढ़ने का एक शेड्यूल होना चाहिए। उस शेड्यूल में उनके खेलने के लिए भी उनकी समय होनी चाहिए, उस शेड्यूल में उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात, बातचीत और अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए जो समय होना चाहिए वो भी होना चाहिए। और जब कभी भी ऐसा कहा गया है कि बच्चे अपना शेड्यूल बनाओ, तो सिर्फ पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हैं, वो अपने खेलने का शेड्यूल उसमें नहीं बनाते हैं, वो अपने खाली समय जिसमें वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें उसका नहीं बनाते हैं। तो जब ऐसा शेड्यूल बनता है तो वो कुछ दिनों में ही टूट जाता है। और ये तो खैर समय के साथ हो ही गया है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, खेलने के घरों के आसपास बहुत उचित न तो जगह बची है और न ही वो बहुत सेफ भी है बच्चों के पर्सपेक्टिव में। तो कैसे खेल कूद कराएं उसके लिए सोचना पेरेंट का काम है कि बच्चे को कुछ खेलने के लिए भी समय होना चाहिए और वो सेफ भी होना चाहिए, तो वो पेरेंट को अपने हिसाब से देखना होगा। अब ये जो टाइम शेड्यूल बनाते हैं उसमें ये देखना है कि बच्चे 6-7 घंटे स्कूल में रहे, 1-2 घंटे 1 घंटे ट्रैवलिंग में निकले, 8 घंटे करीब निकल जाते हैं। अब बचा उनके पास 16 घंटा। अब 16 घंटे में 8 घंटे तो पहले निकाल दीजिए कि उन्हें सोना है जी, तो बच गए 8 घंटे। अब 8 घंटे में उसको पढ़ना भी है, उसको खेलना भी है, उसको नहाना, तैयार होना, खाना पीना सभी को काम करना है, तो वो तो शेड्यूल वहाँ फिक्स होना चाहिए ना जी। और अगर वो शेड्यूल ठीक से बना है तो चलिए उसके अगले स्टेप पे चलना पड़ेगा कि क्या बच्चों के लिए घर में पढ़ने के लिए एक कोई उचित कोना, कोई एक कॉर्नर भी हो या कोई टेबल चेयर है या कोई अलग से रूम है। अब जिसकी जैसी क्षमता वैसी व्यवस्था तो होनी चाहिए, वो होना चाहिए। और बच्चों को अपने टाइम शेड्यूल और टाइम टेबल के अनुसार उचित समय पे वहाँ जाके बैठना चाहिए और कुछ जो कुछ भी उसको करना है वहाँ बैठ के उस पर करना चाहिए, न कि आज बेड पे सो रहे कर रहे हैं, कल सोफ़ा पे लेट के पढ़ रहे हैं, कभी उल्टे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई का तरीका बहुत ज़्यादा कारगर होता नहीं है। दूसरी चीज, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस समय घर का माहौल कैसा होना चाहिए? अब घर का माहौल उस समय पेरेंट टीवी देखेंगे, गेस्ट को एंटरटेन करेंगे, और घर तो इतना बड़ा नहीं है कि पेरेंट टीवी देख रहे हैं और बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और गेस्ट आ रहे हैं तो बच्चे को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कई बार तो बच्चों को ही चाय, नाश्ता, खाना देने का काम दिया जाता है कि भाई किचन से ले जाओ, उनको दो, उन पे ध्यान दो। तो ये सारा कुछ जो चलता रहता है तो बच्चे पढ़ेंगे कब? तो पढ़ने के लिए उनके पास जब बच्चे का शेड्यूल है तो पेरेंट को भी अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि उस दौरान हम किसी गेस्ट को ना एंटरटेन करें, या बच्चे ऐसे टाइम में जब गेस्ट ही आते हैं या और दूसरे डिस्टर्बेंस होते हैं उस दौरान बच्चा भी अपने को फ्री करे और पढ़ाई किसी दूसरे टाइम में करे। तो शेड्यूल को उस ढंग से एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल एडजस्ट हो गया, अब ये देखना है कि छोटा घर है और पढ़ाई के समय टीवी इत्यादि भी नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर 10th बोर्ड और 12th बोर्ड। बोर्ड के दौरान अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा नहीं। तो वैसे समय में मेरे तो सलाह सभी गार्जियन से होती है कि आप कुछ कोशिश कीजिए और ये जितने भी चैनल हैं इनको अनसब्सक्राइब कर लीजिए, एक साल के लिए, जब बच्चे अपने को वो अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तो सलाह है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इसमें ध्यान देने योग्य चीज़ है कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो कितने घंटे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनके सेल्फ स्टडी में कितना टाइम स्कूल में जो उन्होंने पढ़ाई किया है उसको रिवीजन के लिए है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो जो कुछ भी आज पढ़ेंगे कल उसके 20-25% से भी ज़्यादा 30% उनके दिमाग में नहीं बचेगा। ये साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, एजुकेशनली प्रूव्ड हो चुका है। उसके लिए भी एक शेड्यूल है फॉरगेटिंग कर्व को ध्यान में रख के कि फॉरगेटिंग कितनी फास्ट होती है और कितने समय में आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को पहला रिवीजन तो स्कूल के क्लासरूम में ही मिलना चाहिए ड्यूरिंग द क्लास टाइम, जब बच्चे फ्रेश उनके मेमोरी में कोई चीज़ डाली गई है और वो उनसे पूछा जाएगा या उनको बताना है तो वो उनको रिवीजन पहला हो जाता है। दूसरा रिवीजन जो है वो 24 घंटे के अंदर होना ही होना चाहिए। तो 24 घंटा अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज जो पढ़े हैं अब कल पढ़ेंगे हम रिवीजन करेंगे, तो आज ही कर लो। तो आज करने रिवीजन के लिए अब 6 घंटे स्कूल में रहे हैं तो उसके रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए, और 6 सब्जेक्ट होगा, 5 सब्जेक्ट होंगे तो रिवीजन के लिए 2-3 घंटे तो चाहिए
4: जी।
3: अब वो 2-3 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए। उसके बाद पेरेंट जो हैं उनमें एक रोग लग चुका है कि इवन मैंने देखा है कि किंडरगार्टन, प्री प्राइमरी, नर्सरी, इनको बच्चों को भी ट्यूशन के लिए भेजते हैं। अब ये जो ट्यूशन की जो आदत लगा रहे हैं उससे होगा क्या, ये बैसाखी से चलने की इनकी आदत हो जाएगी और ये कभी भी अपने से नहीं पढ़ेंगे। अपने से अगर पढ़ने की क्षमता नहीं डेवलप हुई तो हमेशा डिपेंडेंट होंगे कि मेरे पेरेंट पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, तुमने ट्यूशन नहीं लगाया इसलिए हमने नहीं पढ़ा, तो आप हर चीज़ का उनके पास जवाब होगा
4: जी।
3: तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सेल्फ स्टडी करें और ट्यूशन से 9-10 लेवल तक, 9 तक अपने को अवॉइड करें। अगर क्लासरूम में बच्चे अलर्ट रहेंगे और शाम को रिवीजन करेंगे तो अच्छा है। और इसका ट्यूशन का एक नेगेटिव फैक्टर भी है कि टीचर स्कूल का हो सकता है कि बहुत ही एक्सपर्ट हो, बहुत ट्रेंड है, अच्छे से पढ़ाया है, और घर का जो ट्यूटर है वो तो हो सकता है कि आसपास का कोई इंटरमीडिएट लड़का है जिसको पढ़ाई के बारे में जानकारी भी नहीं है लेकिन वो बेसिक होमवर्क वगैरह कराता है, तो होमवर्क वगैरह कराने के दौरान जो उसका इंटरेक्शन हो रहा है बच्चे से और कन्फ्यूज़न बढ़ता है, तो पढ़ाई जो लर्निंग आउटकम है वो कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए नहीं दिखता है लोअर लेवल में। अब ट्यूशन की ज़रूरत है कहाँ, किस स्टेज में, हायर लेवल में थोड़ी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, सरकार के ही नियम है कि CBSE के लिए आपको कुछ और तैयारी करनी है और कंपटीशन देना तो उसके लिए कुछ और तैयारी करनी है, उन दोनों का लेवल अलग है। तो जब लेवल अलग है तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि स्कूल पे ध्यान कम दे रहे हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, स्कूल को नेगलेक्ट करते हैं और स्कूल तो अब तो मजाक बनने शुरू हो चुका है और ये जितने कोचिंग संस्थान हैं वो स्कूल को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही कहते हैं कि भाई आप आओ हमारे यहाँ और हम आपके स्कूल की भी व्यवस्था कर देंगे। अब स्कूल के क्या व्यवस्था कर देंगे, वो दूर दराज के किसी स्कूल वालों से मिल करके उसमें एडमिशन कराते हैं, उसके लिए अलग अलग नाम है, डमी स्टूडेंट, तो फ्लाइंग कैंडिडेट, ये सब हमारे सिस्टम के फेलियर के कारण है। और ऐसे स्कूलों पर, ऐसे कोचिंग सेंटर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और नहीं होने के कारण उनकी कमाई हो रही है और जो जनरल स्कूल, जो अच्छे स्कूल है जहाँ पढ़ना चाहिए बच्चों को, वहाँ बच्चे दिखते नहीं है क्योंकि तो सेंटर है। अगर उसने फोर्स कर देगा स्कूल ज़्यादा तो बच्चे निकल जाएंगे, जो अच्छे बच्चे भी हैं वो स्कूल छोड़ करके 10th के बाद दूसरे ऐसे फ्लाइंग डमी ऐसे कर जगहों पे चले जाते हैं और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको प्रमोट करते हैं। पता नहीं कैसे बोर्ड को, CBSE को, ICSE को, सरकार को ये दिख क्यों नहीं रहा है कि इस शिक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा लूप होल है। तो वैसे में थोड़ी ट्यूशन की और हायर टेंथ के बाद जरूरत तो पड़ रही है, अगर आप उसको मेडिकल में किसी को जाना है, आईआईटी में जाना है, या लॉ क्लैट का एग्जामिनेशन देना है, या किसी और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, तो वहाँ पे उसको तैयारी पहले से करनी होती है। उस स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा समय अलग से जरूरत पड़ेगा। अगर मान लीजिए 3 घंटा प्रैक्टिस किया और 2-3 घंटा उसमें दिए, तो 8 ही घंटे तो हैं आपके पास, तो 2 घंटे बचे। अब 2 घंटे में उनको चाहे ब्रश करें, खाएं, पिए, जो कुछ भी करें उतना ही है, ट्रैवल करें टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है कि ये कैसे होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर बार हर जगह आ रहा है आजकल, कि सभी बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दे रहे हैं, और मोबाइल देने की प्रक्रिया पहले भी थी, लेकिन ये लॉकडाउन से बढ़ गया, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई का एक ही तरीका था, तो मोबाइल देना पड़ा सभी को। अब जब बच्चे मोबाइल की आदत पड़ गी है तो एडिक्ट हो गए। अब इसी दौरान 2-4 सालों में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। हर बच्चों का पहले तो सुनने में आता था कि भाई हर बच्चे सिर्फ इस पे व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं है, अब कौन सा वी चैट है, तो इंस्टाग्राम आईडी है उनकी, तो फेसबुक है, और भी नए नए चीज़ें हैं जहाँ पे ये बच्चे उस सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे जब कोई बच्चा जाता है या कोई चीज़ अपना उस पे डालता है या कुछ भी होता है, तो हमेशा उसके अंदर एक इच्छा होती है कि दूसरे ने क्या
5: जी,
3: कैसे रिएक्ट किया
5: जी,
3: हमारे पोस्ट पे, हमारे फोटोग्राफ पे, हमारे इस पे, और उसके कारण उसका बार बार ध्यान अपने मोबाइल पे जाता है, या हमने एक मैसेज किया तो उसका दोस्तों ने जवाब किया, अब एक और उस पे वो हो गया, एक ग्रुप बनाने का सिस्टम हो गया है, एक ने कुछ कहा 50 जवाब दे रहे हैं, अब सबका जवाब सुनो, सब पे रिस्पॉन्स करो, तो इनके डेविएशन के बहुत सारे इंतजाम हो चुके हैं। तो मोबाइल तो मिलना ही नहीं चाहिए।
2: जैसा कि सर आप अभी बता रहे हैं कि घर का जो परिवेश है पढ़ाई में किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, किस तरह से मददगार साबित हो सकता है, और पेरेंट्स बच्चे से अपेक्षा करते हैं, तो बच्चे की पढ़ाई के लिए और बेहतर करियर के लिए पेरेंट्स से भी अपेक्षा की जाती है। जैसा कि अभी आप मोबाइल की बात आप कर रहे हैं कि मोबाइल पे जो सोशल मीडिया टूल्स हैं उनमें बच्चा इंगेज हो रहा है और लगातार, और जो टाइम टेबल वो बना रहा है उससे वो डेविएट हो जा रहा है, तो हमें ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चा मोबाइल की तरफ ना बढ़े, और जो उसका डेविएशन है अपने टाइम टेबल से लेकर, तो उस पर हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं सर?
3: देखिए, अगर तो जो पेरेंट्स सक्षम है, बच्चे का पहला बहाना क्या होता है कि स्कूल से हमें होमवर्क दिया जाता है, स्कूल अभी हमको कम्युनिकेट कर रहा है, मैसेज देता है, इसलिए हमारे पास मोबाइल की आवश्यकता है। तो जो पेरेंट्स सक्षम है वो मोबाइल की जगह घर में कोई कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर रखें तो बेहतर है, कम से कम दिखाई पड़े कि बच्चा कर क्या रहा है, बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी गलत तरह के साइट्स पे जा रहा है, और क्या आपने उन सब चीज़ों में को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। और मोबाइल पे भी अनेक चीज़ें होती हैं जहाँ रेस्ट्रिक्शन के होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि मोबाइल की आदत 12 तक डाली ना जाए, और ये शुरुआत में बचपन में जब आदत दी जा रही है ना तभी उनको रोकना पड़ता है। एक बार आदत लग जाएगी तो आप रोक नहीं पाएंगे। रोकने पे आपने अखबारों में सुना होगा कि किसी को मोबाइल रोका, पेरेंट ने तो जा करके छलांग लगा दिया, सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, या डराते हैं। कई पेरेंट हम लोग के पास आते हैं और बोलते हैं कि सर आप ही कुछ बच्चों को समझा दो, हम तो बोलेंगे तो वो मुझे डर लगता है, हम लोग नहीं एक्शन ले सकते हैं, बच्चों से मोबाइल नहीं ले सकते हैं, आप ही किसी तरीके से उससे छीन लो, जिस दिन स्कूल आता है तो हम लोग इससे बच जाएंगे। अब पेरेंट बच्चों से डर रहे हैं, बच्चे पेरेंट से नहीं डरते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि बच्चे पेरेंट से डरें, लेकिन बच्चे पेरेंट की नहीं सुन रहे हैं वही तो बात हो गई ना। और पेरेंट को तो इतना समझना ही होगा कि मोबाइल की जरूरत नहीं है। कई पेरेंट भी हैं उनकी भी गलती है, खुद ही दिन भर मोबाइल पे हैं, मदर भी मोबाइल है, खाना बना रही है मोबाइल है, फादर घर पे आए तो मोबाइल पे हैं, ना कि बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना उनको बाहर ले जा रहे हैं कहीं, ना कुछ कर रहे हैं, तो मोबाइल के कारण तो ये सारा कुछ हो ही रहा है। मोबाइल की आदत तो नहीं होनी चाहिए।
2: सर फिर से हम उस माहौल पर आते हैं, उस परिवेश पर आते हैं जो बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करता है। पेरेंट्स अक्सर देखा गया है कि साइंस के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी 3-3 ट्यूशंस लगा देते हैं, और फिर ट्यूशन जा रहा है बच्चा, फिर ट्यूशन से आ रहा है, फिर दूसरी ट्यूशन जा रहा है, फिर दूसरी ट्यूशन से तीसरी ट्यूशन जा रहा है, तो उसका एक कर्म चलता रहता है। तो उसको जो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो नहीं मिल पाता, और जो माहौल उसको चाहिए परिवार में, पेरेंट्स अपनी तरफ से तो ये कहते हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की है कि बच्चे की हमने ट्यूशन्स लगा दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कारगर है या ये फेल्योर सिस्टम है?
3: बिल्कुल फेल्योर है, ट्यूशन से कुछ नहीं होता है, ट्यूशन से कभी होगा ही नहीं। आपको अपना सिस्टम सुधारना पड़ेगा, और सिस्टम जब आप सुधारेंगे तो उस सिस्टम में आपको बनाना पड़ेगा कि बच्चों का टाइम शेड्यूल जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ अगर उनका पूरा सिलेबस है तो उनको पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए या पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या उन्होंने शेड्यूल के साथ कोई टाइमलाइन भी बनाया है, और अगर टाइमलाइन बनाया है तो उसके पैरेलल एक कॉलम ये भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक टाइमलाइन बनाया हमने 3 महीने का कि 3 महीने में हम ये पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, और उसको हमने 10 या 15 स्टेप्स में बांट दिए, 10 माइलस्टोन्स हैं उसके, तो हर माइलस्टोन के साथ में ऐसा कुछ तो ऐसा होना चाहिए आउटकम जिसको देख के हम समझ जाएं कि पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो गया या दूसरा माइलस्टोन कंप्लीट हो गया। अभी क्या हो रहा है कि पूरा समय निकल जाता है, और जब फाइनल एग्जामिनेशन होता है तब पता चलता है कि हमने तो माइलस्टोन 1 भी नहीं कवर किया था, बच्चा ऐसे ही पूरा बेवकूफ बना रहा है, या बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, या बच्चा डेविएटेड था। अगर आपको पहले माइलस्टोन पे ये पता चल जाएगा आउटकम से कि ये तो पहले ही आउटकम नहीं पहुंचा, तो आपका तो पहले दिमाग खुल जाएगा ना, आप फिर मेहनत करोगे, लड़का भी सीरियस होगा कि हमारे पेरेंट को भी पता है कि भाई हम नहीं कर ध्यान दे रहे हैं तो हम थोड़ा और ध्यान हमारा जरूरी है, नहीं तो आगे फेल करेंगे। अचानक फेल करने से अच्छा है कि हम हर स्टेप पे हमको पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो माइलस्टोन और उससे पैरेलल एक कॉलम पे आउटकम होना चाहिए डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, और ये बेस्ड होता है आपका क्या सिलेबस है और कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, उसके अनुसार आपको करना है। जैसे ही सिलेबस टाइम ये चीज़ों को बांटेंगे बच्चों का दिमाग वैसे भी खराब हो जाएगा कि भाई इतने पर डे के हिसाब से हमको इतने पेजेस पढ़ने हैं और इसके सार को हमें ग्रास्प कर लेना है, तो ये करने के लिए शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा, टाइमलाइन बनानी ही पड़ेगी, आउटकम देखना ही पड़ेगा, और ये चीज़ें अगर चल रही हैं तभी तो आदमी सक्सेसफुल होगा।
2: सर कई बार सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जानकारी में नहीं है, जो हम माइलस्टोन की बात हम करते हैं, आउटकम की बात करते हैं, तो पेरेंट्स अक्सर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो क्या वहाँ पर स्कूल को अपना सहयोग देना चाहिए?
3: नहीं, स्कूल को सहयोग देना चाहिए, और स्कूल सहयोग देने दे भी सकता है, कैपेबल भी है, लेकिन वैसे ये स्कूल क्यों नहीं दे पाते हैं ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि स्कूल पे पेरेंट को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि स्कूल जो कह रहा है उस हिसाब से। आज के समय में अगर आप इस ढंग की पूरी पढ़ाई की व्यवस्था आप पेरेंट को समझाएं, और अगर पेरेंट ट्रस्ट कर रहा है कि भाई हम तो ये नहीं डिजाइन कर पा रहे हैं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल ऐसा कर रहा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि 100 में 95 स्कूल को भी ये नहीं पता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, किस तरीके से हम इनके लिए शेड्यूल बनाएं या उनको बनवाएं उनसे, और बना के दी हुई चीज़ कोई फॉलो नहीं होती है, बनवाना पड़ता है, उनका एंगेजमेंट ज़रूरी है। जैसे कि हर चीज़ में जब वो खुद बनाएंगे तो उसको फॉलो करेंगे, जब आप बना के देंगे तो वो नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो वैसे उस स्थिति में बच्चों को इंगेज करके उसको करना चाहिए, पेरेंट को उस पर स्कूल पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जिन स्कूलों को इसकी जानकारी नहीं है उनको सीखना ही होगा, अल्टीमेटली सीखे बिना तो कुछ होगा नहीं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अब वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी? अब उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाने के लिए स्कूल को भी उतना अवेयर होना पड़ेगा, उतना लर्निंग उनकी भी होनी चाहिए, इंडिविजुअल टीचर्स का भी कि इतने ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो स्कूल को भी करना पड़ेगा कि टीचर की ट्रेनिंग सही करे जिससे वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए। यह ना सोचे कि हम बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो सब चीज़ गूगल में है, और अब तो सारा चीज़ AI से मिल ही जाता है, तो टीचर की ज़रूरत उतना है नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन अगर देना है तो। तो टीचर तो तभी दे सकता है कि उसको बिल्कुल आसान तरीके से उनके अंदर समझा दे, जिससे कि वो सब चीज़ें आत्मसात कर पाए।
2: तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे डॉक्टर हिमांशु शेखर जी से, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियां एजुकेशन को लेकर मिली और बच्चों के करियर से जुड़ी भी बातें आपने बड़े ही आसान और सरल शब्दों में हमें बताई। सर ने हमें बताया कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर सकता है। आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बताया है और आपने ये भी बताया कि बच्चे किस तरह से अपनी जो रेगुलर पढ़ाई है उसे कैसे डेविएट होकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हैं और वहां पर वो पढ़ रहे हैं, और स्कूल के जो सिस्टम है उससे उनका लगाव कम हो रहा है। जबकि स्कूल वाला जो सिस्टम है, पेरेंट्स और स्कूल के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बच्चे के लिए और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।
3: थैंक यू।
0: रेडियो केदार मतलब हिमालयी सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: करे शोर।
1: अरे
0: अरे
1: बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

किस्से, प्यार मोहब्बत के किस्से बेकार हुए, जब देखा तो दिल के टुकड़े हजार हुए।

0: क्या आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारती स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा

0: होती है। इसमें हम बेसिकली जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो वहाँ के जलीय जीव को कैसे बचा सके और अपनी जीविका भी बना सके। सो ये हमारा मेन कंजर्वेशन ट्रेनिंग का गोल होता है कि इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट पीपल, कि हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे जो उसमें जलीय जीव है, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑटर्स हो गए, हमारे स्नेक्स हो गए, और टर्टल्स, घड़ियाल, हमारे मगर की स्पीशीज हो गई, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर उनको इस जलीय जीव के बारे में पता रहेगा तो तभी उसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो यही हमारा मेजर गोल होता है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: जैसा कि आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं, गंगा प्रहरी को आप इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या गंगा प्रहरी के अलावा और भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन करते हैं गंगा के संरक्षण के लिए?
0: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हम अगर हम बात करें अपने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की, तो इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट आता है, हमारे DST वुमेन साइंटिस्ट आते हैं, NGOs हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, इवन दो हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। तो हमारे बहुत सारे, ये मैंने आपको कुछ ही चंद स्टेक होल्डर्स बताए, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स में जुड़े रहते हैं।
1: सिमरन जी, आपको 5 साल हो गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए और आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो सब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एकदम प्रोफाइल चेंज हो गया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपनी इस पूरी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं?
0: सर, हमारा सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले हम देखते हैं हम किस स्टेक होल्डर की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो उससे हमारा उससे पहले होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जिसमें हमारे डिस्कशंस रहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, हम कॉल्स पे करते हैं कि उनकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल उनके पास है, क्या स्किल वो लैक कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने स्टेक होल्डर वाइज उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो हम उनको पढ़ाएंगे, अगर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है या 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से उनके मॉड्यूल्स अरेंज्ड होते हैं डे वाइज। सो हम सबसे पहले उनको देते हैं प्री ट्रेनिंग फॉर्म, जिसमें उस कुछ क्वेश्चन होते हैं रिवर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि उनकी एक्चुअल नॉलेज है क्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए गंगा में क्या जलीय जीव पाए जाते हैं, या हो गया कि पोल्यूशन है रीजन, या क्या रीजन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम आ रही रिवर कंजर्वेशन में। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं, हमारा एक मेथड होता है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये उनकी पहले की नॉलेज थी। उसके बाद जब हमारी कंजर्वेशन ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो हम उनको देते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स, जिसमें हम लोग के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े चेंज किए जाते हैं उसी से रिलेटेड कि पहले उनकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी उसके बेसिस पे, और अब ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है रिलेटेड टू द स्पीशीज कंजर्वेशन, या फिर क्या इम्पैक्ट है इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स का।
1: सिमरन जी, अभी मैं आपसे गंगा जो कंजर्वेशन ट्रेनिंग है इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि WII से जुड़ने की जो आपकी जर्नी है, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है, और कैसे आप WII से जुड़े और इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप तो देहरादून की ही हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे है वसंत विहार में एशियन स्कूल, वहाँ से की हुई है। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, जो मेरी थी केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की बायोटेक्नोलॉजी में ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में डेजर्टेशन किया था स्ट्राइप डायनास के ऊपर, उनका जेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था मैंने कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पूरा उनका हिस्ट्री पैटर्न स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, वो 1 साल मैंने वहाँ इंटर्नशिप किया टाइगर प्रोजेक्ट में, देन फिर मैंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी थी और आगे उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैं इस कंपोनेंट में दो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई हूँ।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं और आप बच्चों से लेकर और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशन है वहाँ तक के लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं, और अभी आपने बताया कि किस तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, हम किस तरह से ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले की हमारी क्या तैयारियाँ होती हैं और क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इन पर भी आप अभी बात कर रहे हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रेनिंग में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जब ट्रेनिंग पूरी होती है जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद उसको सस्टेन करना, क्योंकि ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, जिन व्यक्तियों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको किस तरह का उससे लाभ मिला है, या हमारे जो जलीय जीव है, जो गंगा है जिसके कंजर्वेशन के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको कैसे आप रिपोर्ट करते हैं?
0: अगर हम उसकी बात करते हैं सर, तो हमारा जैसे हमारी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई है,

0: तो हमारे कैरी फॉरवर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम एक्टिविटीज के लिए उनको एक फॉर्म भेजते हैं थ्रू व्हाट्सएप. उसमें एक लिंक होता है जिसमें वो जो भी कर रहे हैं उसके बाद उसमें हम चेक करते हैं कि वो एक्चुअली उन पे इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, वो आगे कुछ कर रहे हैं संरक्षण के लिए या नहीं. तो बट इसमें हमें काफी सारी चीज देखने को मिली है. जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, उन्हें अपने खुद के कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं. हमारे जो वॉलेंटियर्स रहे थे इन प्रोग्राम्स में, वो अपने बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग ट्रेनिंग्स करा रहे हैं. और जो इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन सिर्फ किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, ये एक अब हम बात करेंगे तो जब सब तक एक साथ नहीं जुड़ते संरक्षण का काम नहीं हो सकता. तो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है हमारा. देन हम लोग के जितने भी ये थे गंगा प्रहरी से, ये खुद से आगे आके हम लोग को बताते कि हम लोगों ने संरक्षण के लिए ये किया, ट्रेनिंग्स करवाई. तो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आया है सर. और सर अब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद से भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रही है ट्रेनिंग्स, कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स.
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गंगा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं. गंगा का जो बेसिन एरिया है वो 11 राज्यों से को कवर करता है, 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, तो अलग अलग कम्युनिटी आपको मिलती है. तो जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक प्रोफाइल के लिए, आप गंगा प्रहरियों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल लेके गए और पता चला कि उस स्टेट में कुछ अलग तरह का आपको करना है, तो क्या इस समय कुछ चेंज लाते हैं आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में?
0: जी, इससे पहले कि हम क्या चेंज लाते हैं, मैं बताना चाहूंगी हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो 5 मॉड्यूल्स में होती है. जो पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, दूसरा होता है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स, थर्ड इज हमारा हैबिटेट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, फोर्थ इज हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंड फिफ्थ इज हमारा कंजर्वेशन एजुकेशन. सो हमारे 5 मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं. अगर हम बात करें हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि सबसे पहला सूत्र वही है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं. तो हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में वहाँ के लोग कंफर्टेबल हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं. और हम उनको डे टू डे जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं. तो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, रियल लाइफ डिस्कशंस होते हैं, इन टॉपिक्स पे करते हैं तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से ये कंजर्वेशन ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल रह पाती है. तो इस बेसिस पे हम लोग मेजर करते अपनी ट्रेनिंग.
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और आप WII से जुड़े हुए हैं. सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बाल गंगा प्रहरियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरह का खास मॉड्यूल होता है उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, क्या कुछ खास आप TLM का भी इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे.
0: जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम ना ग्रुप वाइज पढ़ाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी होती है. तो हमारा जूनियर ग्रुप होता है, जैसे हमारे सेकेंड क्लास से लेके सिक्स क्लास तक हो गया, देन हमारे 6 to 8 क्लास हो गया, देन हमारे 9 से 12. तो हमने ऐसे जूनियर सीनियर मिडिल ये करके हमने डिस्टिंग्विश की हुई है और उसी के रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स होती है उन बच्चों के लिए. सो इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं बच्चों के साथ क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं. तो इसमें हम लोग की पजल्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, तो हम लोग उनमें उनको गिफ्ट्स भी देते हैं तो वो और इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पजल्स में, गेम्स में, क्विजेज में. देन हमारे इंटरेक्टिव गेम्स सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन किए गए स्टूडेंट्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली रहता है.
1: बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए मुझे, क्योंकि बच्चों जो बाल गंगा प्रहरी है उनका जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट होता है. अच्छा, मैं एक जानकारी और चाहूंगा, जैसा आपने स्किल की बात की कि हम स्किल्ड कर देते हैं, तो किस तरह की खास स्किल डेवलप होती है?
0: जी, अगर हम बात करें स्किल की तो हमने बताया था कि ये इंटरेक्टिव रहता है, एक्सपर्ट टॉक्स होते हैं, हम फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. अगर हम पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट किया था अपने WII में, जहाँ पे उन लोगों को ऐसे उनको ना एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करनी थी वो वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन, जो उनको प्रिपेयर करती है आगे की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड सॉल्व करने में केसेस के लिए, पोचिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड हो गया, तो ऐसे केसेस को आगे वो सॉल्व कर सके, इसलिए हम उनके लिए एक वाइल्ड लाइफ मॉकअप सीन क्रिएट करते हैं अपने यहाँ और उन लोगों को सॉल्व करना होता है विद क्लूज फाइंड करके कि एक्चुअल में कि ये पोचिंग हुई और ये कौन सा स्पीशीज है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन उनको सिखाया जाता है. अगर हम बात करें वेटनेरियंस की तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल करते हैं स्नेक हैंडलिंग में, तो हम उनको लेके गए थे रेणुका जी ज़ू हिमाचल प्रदेश में. हमने और सिखाया गया है क्रोकोडाइल्स हो गए हमारे, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है वो सिखाया गया था, तो हम उसके लिए अपने वेटनेरियंस को लेके गए थे गोरखपुर जू। ऐसे हम लोग जो एनसीसी एनएसएस कैडेट्स हो गए उनको हमने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी है, उनको स्किल किया गया है कि जब वो एनसीसी कैडेट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे ऐसी सिचुएशंस में, तो इन चीज़ों पर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं।
1: अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, WII से जुड़े हैं और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं, और आप अभी हमें बता रहे थे कि जो कंजर्वेशन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या स्टेप उठाते हैं, क्या मॉड्यूल है और किन प्रोफाइल के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी में की है, उसके बाद आप टाइगर सेंसस से जुड़े, फिर आप कंजर्वेशन ट्रेनिंग पर आए, तो ये फील्ड थोड़ा सा अलग दिखती है, तो क्या अलग महसूस करते हैं, क्या कुछ खास आपने गेन किया है?
0: अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंसेस की तो वो मेरा कोर जेनेटिक फील्ड था एंड दैट वाज ऑल लैब वर्क। सो जब मैं इस फील्ड में जुड़ी कंजर्वेशन से रिलेटेड तो इसने मुझे बहुत ही एम्पावरमेंट दी है कि इस बेसिस पे मेरा नॉलेज इन्हांस हुआ है कंजर्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैं कम्युनिटी के लोगों से मिली, ऑन ग्राउंड गई, फील्ड एक्सपीरियंस किए मैंने बहुत सारे, देन मैं एक्चुअली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में प्लस मेरे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आई वॉज यूज टू होस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है और सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा किया कंजर्वेशन ट्रेनिंग्स ने, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था मेरे ट्रेनिंग वर्क से।
1: जैसा कि आप ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग को सस्टेन भी रखना है, उन्होंने जो सीखा है उसको उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किस तरह से आप मेजर करते हैं?
0: सर एक्चुअली हमारा जैसे ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हो गया, उसके बाद हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ किर्कपैट्रिक मॉडल। सो ये चार बेसिस पे होता है, दैट इज़ लर्निंग, देन देयर बिहेवियर, देन देयर रिजल्ट्स। सो इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग कि उनको एक्चुअली उनके कुछ यूजफुल था कि नहीं था, देन उनका रिएक्शन क्या था, उनको ये यूजफुल लगी है ट्रेनिंग है नहीं, उन्होंने उसके बाद इसको कुछ अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज़ किया है नहीं, और ये इम्पैक्टफुल है या नहीं। सो इस ये हमारे किर्कपैट्रिक मॉडल से मेजर किया जा सकता है।
1: ये जानना चाहिए ये मॉडल है क्या, थोड़ा सा सरल शब्दों में।
0: सरल शब्दों में अगर हम बताएं तो सबसे पहले जो हम उनका चेक करते हैं वो है उनका रिएक्शन, उनको ये यूजफुल लगा, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग्स यूजफुल लगी हैं कि नहीं। उसके बाद रिएक्शन के बाद आता है रिजल्ट्स, कि कैसे रहे रिजल्ट्स, उन्होंने हमें आगे खुद से आके इंटरेक्ट किया और उन्होंने बताया हमें कि हमने अपने कंजर्वेशन के फील्ड में ये किया, अपने अपनी स्थानों पे जाके ये किया। उसके बाद उनका बिहेवियर में क्या चेंज आया है, वो अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कैसे वो मिले, और उसके बाद उनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो ये सब चीज़ों से बेस्ड होता है।
1: मैं जानना चाहूँगा पहला दिन, फर्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग था, जैसा कि आप ही अभी बता रहे हैं कि मैं तो लैब में काम करती थी और सैम्पलिंग आपका वर्क था, लैब से आप जुड़े थे, लेकिन एक एक दिन आप कम्युनिटी के बीच में आए, तो जो डे वन का जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर जानना चाहेंगे।
0: मेरा जो डे वन का एक्सपीरियंस था एक्चुअली वो बहुत टायरिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपोजर देखा ही नहीं था, तो बहुत सारे लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना, उनके बारे में जानना और वो एक्चुअल में क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स वो बारे में जानना, तब आपको जब तक आप खुद जाके कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हैं क्या, क्योंकि अपने AC रूम्स में या लैब्स में बैठ के काम करना ईजी है, बट उनके साथ खुद जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट है। धीरे धीरे मैं उनको उस चीज़ को इंजॉय करने लगी। सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था।
1: सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, उत्तराखंड में रहते हैं हाइट पर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन जब आप मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी भी अलग होती है, टेम्परेचर भी अलग है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं, और कोई ऐसा वाक्या जिसका आप जिक्र करना चाहें?
0: हाँ, जैसे सर आपने बात की थी कि आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरी जो फर्स्ट कंजर्वेशन ट्रेनिंग थी जिसके लिए मैं गई थी वो थी बिजनौर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स भी पड़ता है उसके पास ही। तो जब मैं बिजनौर में गई थी तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दो लोग ही गए थे उस ट्रेनिंग के लिए। सो वहाँ पे जाना, डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेक्ट करना, बातें करना, और उसके बाद खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी हमको। हम लोग जो रोडवेज की बसेज होते हैं उसको लेके गए थे, और मेरे को ऐसे बिल्कुल भी चीज़ों की आदत नहीं थी, तो मेरे लिए वो एक थोड़ा सा कठिन चीज़ रही थी उस उसको अकेले मैनेज करना सारी चीजें, अगर हमें कहीं बात करनी है, हमें कहीं जाना है, तो आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल है, मुझे सब खुद ही मैनेज करना था. तो मैं वहां पे काफी बीमार हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ड्रास्टिक था, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा ड्राई है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. तो ये सब चीजें भी आपको फेस करनी पड़ती है जब आप फील्ड में जाते हैं. तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सर.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उत्तराखंड और सहित 5 राज्य हैं
0: जी,
1: यहाँ पर से होकर गंगा गुजरती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके वहीं चलते हैं, तो कोई और खास एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे?
0: अगर हम बात करें तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. कफनौल में हम, कफनौल में स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग देने गए थे, बाल गंगा प्रहरी की ही ट्रेनिंग. तो वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और हमारे सारा सेटअप ऑलरेडी सेट हो रखा था ट्रेनिंग का. स्कूल में बात हो गई थी प्रिंसिपल से, बच्चों के भी, और वो हमारा लास्ट डे था और वो ट्रेनिंग कराना इम्पोर्टेंट था. बट उस दिन हो गई बारिश. तो हुआ क्या, हम लोग बहुत ही निराश हो गए कि हमारा लास्ट डे और वो हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, क्योंकि हम स्पेशली उसी के लिए गए थे. तो जैसी बारिश रुकी तो हम वहां से बाहर निकल रहे थे, ऐसे हल्का सा आगे घूमने के लिए गए कि देखते ही क्या हो रहा है. बट वहां पे हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखे और वो इतने एंथुजियास्टिक थे, क्योंकि वो हमसे पहले एक दिन मिल चुके थे. तो उन्होंने खुद बोला कि अरे दीदी, आप लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे हो क्या, क्या हुआ उस चीज का. हमने कहा बच्चों आज तो आपका स्कूल बंद हो गया बारिश की वजह से. सो उन्होंने बोला नहीं, हम तो आ सकते हैं, हम तो आएंगे, हम आना चाहते हैं. तो वो ट्रेनिंग से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बोला कि हम तो आज भी आएंगे, हमारा स्कूल बंद है. तो वो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म्स पहन के, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, उन्होंने कहा हाँ, हम अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे. तो वो सब लोग 15-20 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे दोस्तों को लेके, जितने भी आ सकते थे, सारे स्कूल के बाहर इकट्ठे हो गए उस ट्रेनिंग के लिए. तो मतलब मैं वो देख के हुई कि हमसे छोटे बच्चे हैं वो, बट दे आर इंटरेस्टेड सो मच इन ट्रेनिंग्स रिलेटेड, कि उन्होंने खुद एफर्ट्स लिए और बोला कि हम आना चाहते और अटेंड करना चाहते हैं. तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ्यूचर अच्छे हाथों में.
1: जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आए, तो किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसके बीच में, एक बच्चों के बीच में, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, जब उनकी रुचि होगी तभी वो आएंगे. तो किस तरह की रुचि आप उनको डेवलप करते हैं, किस तरह का?
0: सर जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक होती है इन बच्चों के लिए, कि कछुए का क्या काम है गंगा नदी में, गैंजेटिक डॉल्फिन का क्या काम है, वो कैसे सरफेस पे आती है. तो उनको बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि अच्छा ऐसा होता है. जैसे हम कछुओं के बारे में बताते हैं कि जिसमें सड़े गले मांस मच्छी होता है उसको खा के साफ करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने गेम्स डिजाइन किए हुए, जैसे टोटो टर्टल मोटो, मीन्स उसमें एक टर्टल बनाया हुआ है और उसको अपने घर पहुंचना है. तो वो जो पाथ क्रॉस करेगा उस मेज में, उसके बीच में उसके फूड हैबिट्स हैं, मीन्स क्या क्या वो खाता है वो बने हुए होंगे, और कुछ अगर गलत पाते हैं तो उसमें वो चीज नहीं खाता होगा, या तो वो रास्ता बंद है. तो ऐसे जब वो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें जागरूकता भी बढ़ती है कि अच्छा ये चीज ये खाता है, तो उनसे उनको टर्टल्स का फूड हैबिटेट भी पता चल जाता है. तो ऐसे गेम्स हो गए, या फिर पजल्स हो गए जिसमें हमारा पूरा बना हुआ होता है कि गंगा में क्या स्पीशीज है. तो जब उसको कनेक्ट करके उनको फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं. फर्स्ट चीज होती है, अगर किसी को भी कोई चीज मिलती है ना किसी भी चीज करने से, उन्हें बहुत खुशी होती है. तो हमेशा उनके लिए ऐसी चीजें रखते हैं, रिवॉर्ड्स रखते हैं, जैसे पेन पेंसिल हो गया, ये उनके काम करेगा, प्लस उनको उत्सुकता रहती है जानने की.
1: अच्छा जो ये मटेरियल है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल है, जो हम TLM भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसको कैसे आप खुद से इसको डेवलप करते हैं, या किस तरह का कोई सपोर्ट आपको मिलता है?
0: सर हम, हाँ, सपोर्ट मिलता है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ऐसे हमने भी अपने ट्रेनिंग करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर मेंशन हो रखा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या ट्रेनिंग करिकुलम है, और उसके ऊपर बुक्स भी छपे हुए हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा ट्रेनिंग मटेरियल जनरेट करते हैं, बुक्स जनरेट करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे.
1: तो ये जो, क्योंकि ये बड़ा क्रिएटिव काम है, कि जैसा आप अभी बता रहे हैं कि टर्टल का जो है वो पाथ क्या है और क्या क्या उसकी फूड हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने बता रहे हैं. तो ये आप, ये जो पूरा तैयार होता है, ये पूरा जो मॉड्यूल, तो ये कहाँ आप, ये WIA में तैयार होता है या आप लोग कहीं और से सपोर्ट भी लेते हैं?
0: नहीं सर, ये हम WIA में करते हैं. जो हमारी टीम है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका काम यही है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना इन स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए. तो जो हमारी हेड है उनके साथ हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा था इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हमारे, डिस्कशन रहते हैं, एंड देन हम उसको एक बार ट्रायल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि इज इट सक्सेसफुल, वो समझ पा रहे हैं इसके थ्रू उसका हैबिटेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसको फिर लार्ज स्केल पे लेके लेके जाते हैं, फिर और सब स्कूल्स में भी लेके जाते हैं इन गेम्स को और खिलाते हैं।
1: बहुत शानदार आपने बताया। अच्छा, जो अभी तो हम बाल गंगा प्रहरी की बात कर रहे हैं, जो गंगा प्रहरी हैं उनके लिए क्या किस तरह का खास डिजाइन करते हैं आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल?
0: सर, उनके लिए तो हम लोग ना मेनली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, लाइवलीहुड, क्योंकि मेन उनकी जो जीविका है वो उसी से जुड़ी है, तो जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो उससे रिलेटेड हो गए। हमारे फिशरमैन हो गए, बोटमैन हो गए, तो हम उनकी जो बोट्स है ना सर, उनको पेंट करवाते हैं जिसमें हमारे ज्ञानचट्टिक डॉल्फिन्स बनी हुई, ऑटर बनी हुई है, और उनको इस स्पीशीज से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब उनके बोट में लोग बैठते हैं ना आके, तो वो उनको बताते हैं कि आपको पता है गंगा में ज्ञानचट्टिक डॉल्फिन भी मिलती है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि डॉल्फिन हमारे गंगा में भी मिलती है, तो इसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में, ऑटर्स के बारे में। तो ऐसे जो हमारे गंगा प्रहरी है वो अपनी जीविका भी चला रहे हैं, प्लस कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को जो उनकी बोट्स में आके बैठते हैं।
1: ये अभी तो आप, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है, मेडिकल एड भी आता है, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको?
0: अगर हम सर बात करें ना, उनको एज पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बट जो हम स्पीशीज से रिलेटेड है कि उनको हमारा उसका एक टर्म है स्पीशीज इन डिस्ट्रेस, उनके ऊपर कैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए, वो एक टीम बनाई जाती है
1: जी।
0: जो क्विक रिस्पांस टीम जिसे हम कहते हैं, कि अगर उन्हें कोई स्पीशीज दिखी जो डिस्ट्रेस में है या फंसी हुई है, इंटेंगल्ड है जाल में, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो इन कंजर्वेशन ट्रेनिंग के थ्रू इसका बहुत क्विक और फास्ट रिस्पॉन्स रहा है।
1: तो ये ट्रेनिंग आप ही देते हैं या?
0: हाँ, रेस्क्यू एंड रिहैब में सर ये ट्रेनिंग आती है। जैसे मैं कह रही थी कि ये सक्सेसफुल कैसे हुई है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है, तो जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए जो देखते हैं एक्चुअली में कि उन्होंने स्पीशीज देखी जो रोज गंगा के किनारे जाता है, अगर उनको कोई दिखता है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट एक रेस्क्यू टीम भेजती है, तो ये जो पूरा कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनता है, यही हमारे कंजर्वेशन ट्रेनिंग का एक्चुअली हम बोलेंगे कि जैसे कहते हैं सक्सेसफुल।
1: आपको लगता है कि जो रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू की हम बात करते हैं, तो उसका क्या एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
0: जी सर, बिल्कुल आ रहा है। हमारे काफ़ी सारे डॉल्फिन्स रेस्क्यू किए गए हैं, जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है सारनाथ में, वाराणसी में, वो सब बहुत सक्सेसफुल हैं सर, और हम उनको फिर उनको रेस्क्यू करके उनको ट्रीटमेंट देके फिर वापस उनके हैबिटेट में उनको रिलीज भी किया जाता है। इन सब की पब्लिकेशंस भी हैं।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग दी, बातचीत की और ट्रेनिंग का सेशन ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको भी आप फॉलो करते हैं, और ये भी बताया आपने कि कैसे मेडिकल जो सपोर्ट उनको मिलता है, कोई अगर कोई मछली जो है जाल में फंसी है, दिक्कत में है, तो उसको भी सपोर्ट करने के जो केस हैं वो लगातार आपके सामने आते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिमरन अग्रवाल जी से, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और आप WII से जुड़े हैं, और आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कंजर्वेशन ट्रेनिंग देते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। आपने अभी बताया कि बाल गंगा प्रहरियों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, और जो गंगा प्रहरी हैं जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और कई तरह के प्रोफाइल हैं, जैसे आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स हैं और आपका फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बाल गंगा प्रहरी की ट्रेनिंग पर ही खास मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो किस तरह का स्किल डेवलप हो जाता है बच्चों में, और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और लाइवलीहुड की तरफ?
0: जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उससे पहले हम लोग उनको बेसिक कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं और उनको फील्ड में लेके जाते हैं। हम उनके एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारे WII में एक नेचर ट्रेल है, तो उस पर लेके जाते हैं, तो उस पर हम उनको सिखाते हैं कि आपको जब आप जाएंगे जंगलों में तो आपको कैसे चलना है, बहुत शांति मेंटेन रखनी है, क्या ऐसे कपड़े पहनने हैं, नॉइज नहीं क्रिएट करनी है, जैसे बर्ड्स को मॉनिटर कर पाए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेक भी है, तो रेजिडेंट बर्ड्स कौन सी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी हैं, बटरफ्लाई की कौन सी स्पीशीज हैं, जो इकोसिस्टम में ट्रीज कौन से हैं, तो इससे उनका ना क्या बोलते हैं नॉलेज इंप्रूव होती है, और उन्हीं की इसमें फिर रुचि डिवाइड हो जाती है कि उनको बर्ड वॉचर्स बनना है कि नहीं बनना है, बटरफ्लाई मॉनिटरिंग करनी है कि नहीं करनी है, तो उसी पे स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से वो फील्ड चूज कर लेता है, तो वो आगे जाके लोकल गाइड्स बन सकते हैं, और उसके बाद फिर उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं स्पीशीज के बेसिस पे।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है, और सिमरन जी मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश गंगा के संरक्षण के लिए, गंगा में पलने वाले जो जलीय जीव हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए, आपको कोई खास मैसेज है तो प्लीज़।
0: अगर हम सिर्फ अभी संरक्षण की बात करें, ये रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं है, किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो, किसी भी स्पीशीज का हो, चाहे हम टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, किसी भी कंजर्वेशन में, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये पीपल के लिए है, इट्स फॉर पीपल, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए. तो वो जब तक खुद इस कंजर्वेशन को महसूस नहीं करेंगे, फील्ड पे जाके देखेंगे नहीं, खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. तो मैं यूथ को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनको खुद निकल के ऑन फील्ड ये खुद महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए बेसिकली, कि एक्चुअल में कंजर्वेशन ये हमारा खुद का एक इंडिविजुअल एफर्ट है, ना कि गवर्नमेंट का या किसी और संस्थान का या ग्रुप का. तो उन्हें खुद से ये एफर्ट्स लेने चाहिए.
1: तो अभी हम बात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी से, आप WII से जुड़े हैं, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, और आप की जो एक्सपर्टीज है वो है कंजर्वेशन ट्रेनिंग. आप हर प्रोफाइल, गंगा प्रहरियों से लेकर समुदायों से लेकर आप हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को भी गंगा के संरक्षण और हमारे जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की ट्रेनिंग देते हैं. और आपका जो शुरुआत थी वो लैब से थी, लैब से आप कम्युनिटी के बीच में पहुँचे हैं, या आपकी जो एक अच्छी खासियत है वो ये है. और बात करते हुए सिमरन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने अभी बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, बच्चों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल करते हैं, बड़ों के लिए क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, किस तरह से वो एम्पावर होते हैं, ये बहुत सारी जानकारियां आपने अभी हमें दी है. आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा, और रेडियो केदार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत थैंक यू.

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार। मैं हूं राजेश पांडे। आज हम अपने स्टूडियो में मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर जी से। आप वरिष्ठ मनोविज्ञानी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो केदार।
1: नमस्ते राजेश जी, और नमस्कार आपके सारे रेडियो केदार के श्रोतागणों को भी जो हमारी वार्ता आज सुन रहे हैं।
0: सर, हम आज जो वार्ता करने वाले हैं उसका विषय है घर का जो वातावरण है वो किस तरह से हम व्यवस्थित करें कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें।
1: आपका प्रश्न तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के परिवेश में इसको देखते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि शायद ये इस पे ध्यान कमी लोग दे रहे हैं, और पेरेंट्स को भी इस पे ध्यान देना है। स्कूल मैनेजमेंट या जो भी उन बच्चों के नियर एंड डियर वन है, उनको इस चीज़ पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए वातावरण कैसे बनाएं जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें, पढ़ाई में वो आगे बढ़ सकें, या जो भी उनका इंटरेस्ट है या एप्टीट्यूड है उसमें, उस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकें। इसके लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी पढ़ाई के बारे में समझने या बच्चों से एक्सपेक्ट करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं किस तरह की हैं। अगर किसी बच्चों से हम उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, या पेरेंट ये सोचें कि जो चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए उन चीज़ों को हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे उसमें सफल हो जाएं, और उसका प्रेशर हमेशा देते रहेंगे और ये नहीं ध्यान देंगे कि बच्चों का स्किल किन चीज़ों पे है, बच्चों का एप्टीट्यूड किस क्षेत्र में है, तो बच्चे अच्छा नहीं करेंगे। अब क्या है कि आपका प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके से आप पूछना शायद चाह रहे हो कि बच्चों का ऐसा कौन सा आइडियल इन्वायरमेंट हो या कौन सा ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर वो अच्छा करे पढ़ाई में या शिक्षा के क्षेत्र में, या उनके जो भी खेल कूद या जो भी क्षेत्र में वो जीना चाहते हैं उसमें अच्छा करें। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि अगर कोई किसी एक खेल के स्पर्धा में भी अच्छा करता है तो वो भी सफल माना जाता है, वो भी अच्छा है। लेकिन हमें समझना है कि वो उसका उस खेल में अच्छा करना या उस एप्टीट्यूड में अच्छा करने की कितनी उसकी क्षमता है। अगर क्षमता है तो हमें सब हर तरह का उनको इन्वायरमेंट देना चाहिए। अब घर के परिवेश में अगर देखते हैं तो सबसे पहले बच्चा जब घर जाता है या स्कूल से घर आता है तो पेरेंट को ये तो देखना ही है कि हमें उसको जो फूड दे रहे हैं वो कितना न्यूट्रिशन उसमें है या नहीं है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बच्चों को पेरेंट, क्योंकि वो खुद देर से उठते हैं, रात में टीवी देखते हैं, तो बच्चों को चिप्स, बिस्किट का पैकेट, नमकीन, मूँगफली, और बहुत से बहुत किसी दिन ज़्यादा दया कर दिए तो ब्रेड में जैम लगा के दे दिए, यही दे करके काफ़ी पेरेंट भेज देते हैं बच्चों को। तो क्या ये न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के हिसाब से, जो जिनका ग्रोथ हर दिन हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत है, वो उचित है? तो ऐसे में ऐसे पेरेंट जो हैं वो जिम्मेवार हैं जो अगर बच्चों का अपना उनके खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको हर दिन आवश्यकता है, उनके शरीर का विकास हो रहा है। एडल्ट के शरीर तो एक विकास का स्तर पहुंच करके स्थिर हो जाता है, लेकिन बच्चों में विकास होता है, हर दिन वो उनको आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को एक न्यूट्रिशियस फूड तो मिलना ही चाहिए, और जब घर में लौट के आते हैं स्कूल से तो उनको खाने के साथ साथ एक उचित इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता होती है। मतलब स्कूल से लौट के आए तो क्या रेस्ट करने के लिए उनके पास कोई समय है? तो वो उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनको रेस्ट तो देना चाहिए। अगर आप शाम को चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, पढ़ाई पे ध्यान दे, खेलकूद में करे, तो कुछ देर के रेस्ट आवश्यक है। अनेक घरों में ऐसा देखा जाता है कि आजकल के घर न्यूक्लियर हाउसेज हैं, छोटे घर हैं जिसमें, या लोग कैपिटल टाउन के नज़दीक या किसी मेन टाउन के नज़दीक आ करके गांव से भी शिफ्ट करके एक घर लेते हैं जिसमें एक कमरा या दो कमरा होता है, उसी में पूरा परिवार होता है। अब उस परिस्थिति में बच्चे को पढ़ना है तो हमें तो प्लान करना है, तो भाई उस परिस्थिति को भी प्लान करनी होगी। तो ऐसे में ये लगता है कि बच्चों के पास जो पढ़ाई में अच्छा नहीं करने का कारण बहुत सारे दिखते हैं। तो पहला कारण ये होता है कि उनकी स्टडी हैबिट्स जो होते हैं वो गलत होती है या कमज़ोर होती हैं। या उचित नहीं होती हैं। तो स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करना, अब स्टडी हैबिट्स इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि उनके पढ़ने का एक शेड्यूल होना चाहिए, उस शेड्यूल में उनके खेलने के लिए भी उनकी समय होनी चाहिए, उस शेड्यूल में उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात बातचीत और अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए जो समय होना चाहिए वो भी होना चाहिए। और जब कभी भी ऐसा कहा गया है कि बच्चे अपना शेड्यूल बनाओ, तो सिर्फ पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हैं, वो अपने खेलने का शेड्यूल उसमें नहीं बनाते हैं, वो अपने खाली समय जिसमें वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें उसका नहीं बनाते हैं। तो जब ऐसा शेड्यूल बनता है तो वो कुछ दिनों में ही टूट जाता है। और ये तो खैर समय के साथ हो ही गया है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, खेलने के घरों के आसपास बहुत उचित न तो जगह बची है अब
0: जी,
1: और न ही वो बहुत सेफ भी है बच्चों के पर्सपेक्टिव में, तो वो कैसे खेल कूद कराएं उसके लिए सोचना पेरेंट का काम है कि बच्चे को कुछ खेलने के लिए भी समय होना चाहिए और वो सेफ भी होना चाहिए, तो वो पेरेंट को अपने हिसाब से देखना होगा। अब ये जो टाइम शेड्यूल बनाते हैं उसमें ये देखना है कि बच्चे 6-7 घंटे स्कूल में रहे, 1-2 घंटे 1 घंटे ट्रैवलिंग में निकले, 8 घंटे करीब निकल जाते हैं। अब बचा उनके पास 16 घंटा, अब 16 घंटे में 8 घंटे तो पहले निकाल दीजिए कि उन्हें सोना है, तो बच गए 8 घंटे। अब 8 घंटे में उसको पढ़ना भी है, उसको खेलना भी है, उसको नहाना तैयार होना खाना पीना सभी को काम करना है, तो वो तो शेड्यूल वहाँ फिक्स होना चाहिए ना। और अगर वो शेड्यूल ठीक से बना है तो चलिए उसके अगले स्टेप पे चलना पड़ेगा कि क्या बच्चों के लिए घर में पढ़ने के लिए एक कोई उचित कोना, कोई एक कॉर्नर भी हो, या कोई टेबल चेयर है, या कोई अलग से रूम है। अब जिसकी जैसी क्षमता वैसी व्यवस्था तो होनी चाहिए, वो होना चाहिए। और बच्चों को अपने टाइम शेड्यूल और टाइम टेबल के अनुसार उचित समय पे वहाँ जाके बैठना चाहिए और कुछ जो कुछ भी उसको करना है वहाँ बैठ के उस पर करना चाहिए, न कि आज बेड पे सो रहे कर रहे हैं, कल सोफ़ा पे लेट के पढ़ रहे हैं, कभी उल्टे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई का तरीका बहुत ज़्यादा कारगर होता नहीं है। दूसरी चीज़, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस समय घर का माहौल कैसा होना चाहिए। अब घर का माहौल उस समय पेरेंट टीवी देखेंगे, गेस्ट को एंटरटेन करेंगे, और घर तो इतना बड़ा नहीं है कि पेरेंट टीवी देख रहे हैं और बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और गेस्ट आ रहे हैं तो बच्चे को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कई बार तो बच्चों को ही चाय नाश्ता खाना देने का काम दिया जाता है कि भाई किचन से ले जाओ उनको दो, उन पर ध्यान दो। तो ये सारा कुछ जो चलता रहता है तो बच्चे पढ़ेंगे कब। तो पढ़ने के लिए उनके पास जब बच्चे का शेड्यूल है तो पेरेंट को भी अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि उस दौरान हम किसी गेस्ट को ना एंटरटेन करें, या बच्चे ऐसे टाइम में जब गेस्ट ही आते हैं या और दूसरे डिस्टर्बेंस होते हैं उस दौरान बच्चा भी अपने को फ्री करे और पढ़ाई किसी दूसरे टाइम में करे। तो शेड्यूल को उस ढंग से एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल एडजस्ट हो गया, अब ये देखना है कि छोटा घर है और पढ़ाई के समय टीवी इत्यादि भी नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर 10th बोर्ड और 12th बोर्ड। बोर्ड के दौरान अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, तो वैसे समय में मेरे तो सलाह सभी गार्जियन से होती है कि आप कुछ कोशिश कीजिए और ये जितने भी चैनल हैं इनको अनसब्सक्राइब कर लीजिए 1 साल के लिए, जब बच्चे अपने को अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तो सलाह है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इसमें ध्यान देने योग्य चीज़ है कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो कितने घंटे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और उनके सेल्फ स्टडी में कितना टाइम स्कूल में जो उन्होंने पढ़ाई किया है उसको रिवीजन के लिए है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो जो कुछ भी आज पढ़ेंगे कल उसके 20-25% से भी ज़्यादा 30% उनके दिमाग में नहीं बचेगा। ये साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली एजुकेशनली प्रूव्ड हो चुका है। उसके लिए भी एक शेड्यूल है फॉरगेटिंग कर्व को ध्यान में रख के कि फॉरगेटिंग कितनी फास्ट होती है और कितने समय में आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को पहला रिवीजन तो स्कूल के क्लासरूम में ही मिलना चाहिए ड्यूरिंग द क्लास टाइम, जब बच्चे फ्रेश उनके मेमोरी में कोई चीज़ डाली गई है और वो उनसे पूछा जाएगा या उनको बताना है, तो वो उनको रिवीजन पहला हो जाता है। दूसरा रिवीजन जो है वो 24 घंटे के अंदर होना ही होना चाहिए। तो 24 घंटा अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज जो पढ़े हैं अब कल पढ़ेंगे हम रिवीजन करेंगे, तो आज ही कर लो। तो आज करने रिवीजन के लिए अब 6 घंटे स्कूल में रहे हैं तो उसके रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए, और 6 सब्जेक्ट होगा, 5 सब्जेक्ट होंगे, तो रिवीजन के लिए 2-3 घंटे तो चाहिए
0: जी।
1: अब वो 2-3 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए। उसके बाद पेरेंट जो हैं उनमें एक रोग लग चुका है कि इवन मैंने देखा है कि किंडरगार्टन, प्री प्राइमरी, नर्सरी, इनको बच्चों को भी ट्यूशन के लिए भेजते हैं। अब ये जो ट्यूशन की जो आदत लगा रहे हैं उससे होगा क्या, ये बैसाखी से चलने की इनकी आदत हो जाएगी और ये कभी भी अपने से नहीं पढ़ेंगे। अपने से अगर पढ़ने की क्षमता नहीं डेवलप हुई तो हमेशा डिपेंडेंट होंगे कि मेरे पेरेंट पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, तुमने ट्यूशन नहीं लगाया इसलिए हमने नहीं पढ़ा, तो आप हर चीज़ का उनके पास जवाब होगा
0: जी।
1: तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सेल्फ स्टडी करें और ट्यूशन से 9-10 लेवल तक, 9 तक अपने को अवॉइड करें। अगर क्लासरूम में बच्चे अलर्ट रहेंगे और शाम को रिवीजन करेंगे तो अच्छा है। और इसका ट्यूशन का एक नेगेटिव फैक्टर भी है कि टीचर स्कूल का हो सकता है कि बहुत ही एक्सपर्ट हो, बहुत ट्रेंड है, अच्छे से पढ़ाया है, और घर का जो ट्यूटर है वो तो हो सकता है कि आसपास का कोई इंटरमीडिएट लड़का है जिसको पढ़ाई के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो बेसिक होमवर्क वगैरह कराता है, तो होमवर्क वगैरह कराने के दौरान जो उसका इंटरेक्शन हो रहा है बच्चे से और कन्फ्यूज़न बढ़ता है, तो पढ़ाई जो लर्निंग आउटकम है वो कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए नहीं दिखता है लोअर लेवल में। अब ट्यूशन की ज़रूरत है कहाँ, किस स्टेज में, हायर लेवल में थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, सरकार के ही नियम है कि CBSE के लिए आपको कुछ और तैयारी करनी है और कंपटीशन देना तो उसके लिए कुछ और तैयारी करनी है, उन दोनों का लेवल अलग है। तो जब लेवल अलग है तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि स्कूल पे ध्यान कम दे रहे हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, स्कूल को नेगलेक्ट करते हैं, और स्कूल तो अब तो मजाक बनने शुरू हो चुका है, और ये जितने कोचिंग संस्थान हैं वो स्कूल को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही कहते हैं कि भाई आप आओ हमारे यहाँ और हम आपके स्कूल की भी व्यवस्था कर देंगे। अब स्कूल के क्या व्यवस्था कर देंगे, वो दूर दराज के किसी स्कूल वालों से मिल करके उसमें एडमिशन कराते हैं, उसके लिए अलग अलग नाम है, डमी स्टूडेंट, तो फ्लाइंग कैंडिडेट, ये सब हमारे सिस्टम के फेलियर के कारण है। और ऐसे स्कूलों पर, ऐसे कोचिंग सेंटर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और नहीं होने के कारण उनकी कमाई हो रही है, और जो जनरल स्कूल, जो अच्छे स्कूल है जहाँ पढ़ना चाहिए बच्चों को, वहाँ बच्चे दिखते नहीं है, क्योंकि तो सेंटर है, अगर उसने फोर्स कर देगा स्कूल ज़्यादा तो बच्चे निकल जाएंगे, जो अच्छे बच्चे भी हैं वो स्कूल छोड़ करके 10th के बाद दूसरे ऐसे फ्लाइंग डमी ऐसे कर जगहों पे चले जाते हैं, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको प्रमोट करते हैं। पता नहीं कैसे बोर्ड को, CBSE को, ICSE को, सरकार को ये दिख क्यों नहीं रहा है कि इस शिक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा लूप होल है। तो वैसे में थोड़ी ट्यूशन की और हायर 10th के बाद ज़रूरत तो पड़ रही है, अगर आप उसको मेडिकल में किसी को जाना है, IIT में जाना है, या लॉ क्लैट का एग्जामिनेशन देना है, या किसी और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, तो वहाँ पे उसको तैयारी पहले से करनी होती है। उस स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा समय अलग से जरूरत पड़ेगा। अगर मान लीजिए 3 घंटा प्रैक्टिस किया और 2-3 घंटा उसमें दिए, तो 8 ही घंटे तो हैं आपके पास, तो 2 घंटे बचे। अब 2 घंटे में उनको चाहे ब्रश करें, खाए पिए, जो कुछ भी करें उतना ही है, ट्रैवल करें टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है कि ये कैसे होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर बार हर जगह आ रहा है आजकल, कि सभी बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दे रहे हैं, और मोबाइल देने की प्रक्रिया पहले भी थी, लेकिन ये लॉकडाउन से बढ़ गया, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई का एक ही तरीका था, तो मोबाइल देना पड़ा सभी को। अब जब बच्चे मोबाइल की आदत पड़ गी है तो एडिक्ट हो गए। अब इसी दौरान 2-4 सालों में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, हर बच्चों का पहले तो सुनने में आता था कि भाई सारे बच्चे सिर्फ इस पे व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं है अब, कौन सा वी चैट है, तो इंस्टाग्राम आईडी है उनकी, तो फेसबुक है, और भी नए नए चीज़ें हैं जहाँ पे ये बच्चे उस सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे जब कोई बच्चा जाता है या कोई चीज़ अपना उस पर डालता है या कुछ भी होता है, तो हमेशा उसके अंदर एक इच्छा होती है कि दूसरे ने क्या
0: जी,
1: कैसे रिएक्ट किया
0: जी,
1: हमारे पोस्ट पे, हमारे फोटोग्राफ पे, हमारे इस पे, और उसके कारण उसका बार बार ध्यान अपने मोबाइल पे जाता है, या हमने एक मैसेज किया तो उसका दोस्तों ने जवाब किया, अब एक और उस पे वो हो गया, एक ग्रुप बनाने का सिस्टम हो गया है, एक ने कुछ कहा 50 जवाब दे रहे हैं, अब सबका जवाब सुनो, सब पे रिस्पॉन्स करो, तो इनके डेविएशन के बहुत सारे इंतजाम हो चुके हैं, तो मोबाइल तो मिलना ही नहीं चाहिए।
0: जैसा कि सर आप अभी बता रहे हैं कि घर का जो परिवेश है पढ़ाई में किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, किस तरह से मददगार साबित हो सकता है, और पेरेंट्स बच्चे से अपेक्षा करते हैं, तो बच्चे की पढ़ाई के लिए और बेहतर करियर के लिए पेरेंट्स से भी अपेक्षा की जाती है। जैसा कि अभी आप मोबाइल की बात आप कर रहे हैं कि मोबाइल पे जो सोशल मीडिया टूल्स हैं उनमें बच्चा इंगेज हो रहा है और लगातार, और जो टाइम टेबल वो बना रहा है उससे वो डेविएट हो जा रहा है, तो हमें ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चा मोबाइल की तरफ ना बढ़े, और जो उसका डेविएशन है अपने टाइम टेबल से लेकर, तो उस पर हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं सर?
1: देखिए, अगर तो जो पेरेंट्स सक्षम है, बच्चे का पहला बहाना क्या होता है कि स्कूल से हमें होमवर्क दिया जाता है, स्कूल अभी हमको कम्युनिकेट कर रहा है, मैसेज देता है, इसलिए हमारे पास मोबाइल की आवश्यकता है। तो जो पेरेंट्स सक्षम है वो मोबाइल की जगह घर में कोई कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर रखें तो बेहतर है, कम से कम दिखाई पड़े कि बच्चा कर क्या रहा है, बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी गलत तरह के साइट्स पे जा रहा है, और क्या आपने उन सब चीज़ों में को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। और मोबाइल पे भी अनेक चीज़ें होती हैं जहाँ रेस्ट्रिक्शन के होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि मोबाइल की आदत 12 तक डाली ना जाए, और ये शुरुआत में बचपन में जब आदत दी जा रही है ना तभी उनको रोकना पड़ता है। एक बार आदत लग जाएगी तो आप रोक नहीं पाएंगे। रोकने पे आपने अखबारों में सुना होगा कि किसी को मोबाइल रोका, पेरेंट ने तो जा करके छलांग लगा दिया, सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, या डराते हैं। कई पेरेंट हम लोग के पास आते हैं और बोलते हैं कि सर आप ही कुछ बच्चों को समझा दो, हम तो बोलेंगे तो वो मुझे डर लगता है, हम लोग नहीं एक्शन ले सकते हैं, बच्चों से मोबाइल नहीं ले सकते हैं, आप ही किसी तरीके से उसे छीन लो, जिस दिन स्कूल आता है तो हम लोग इससे बच जाएंगे। अब पेरेंट बच्चों से डर रहे हैं, बच्चे पेरेंट से नहीं डरते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि बच्चे पेरेंट से डरें, लेकिन बच्चे पेरेंट की नहीं सुन रहे हैं, वो वही तो बात हो गई ना। और पेरेंट को तो इतना समझना ही होगा कि मोबाइल की जरूरत नहीं है। कई पेरेंट भी हैं उनकी भी गलती है, खुद ही दिन भर मोबाइल पे हैं, मदर भी मोबाइल है, खाना बना रही है मोबाइल है, फादर घर पे आए तो मोबाइल पे हैं, ना कि बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना उनको बाहर ले जा रहे हैं कहीं, ना कुछ कर रहे हैं, तो मोबाइल के कारण तो ये सारा कुछ हो ही रहा है। मोबाइल की आदत तो नहीं होनी चाहिए।
0: सर फिर से हम उस माहौल पर आते हैं, उस परिवेश पर आते हैं जो बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करता है। पेरेंट्स अक्सर देखा गया है कि साइंस के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी तीन तीन ट्यूशंस लगा देते हैं, और फिर ट्यूशन जा रहा है बच्चा, फिर ट्यूशन से आ रहा है, फिर दूसरी ट्यूशन जा रहा है, फिर दूसरी ट्यूशन से तीसरी ट्यूशन जा रहा है, तो उसका एक क्रम चलता रहता है, तो उसको जो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो नहीं मिल पाता, और जो माहौल उसको चाहिए परिवार में, पेरेंट्स अपनी तरफ से तो ये कहते हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की है कि बच्चे की हमने ट्यूशन्स लगा दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कारगर है या ये फेल्योर सिस्टम है?
1: बिल्कुल फेल्योर है। ट्यूशन से कुछ नहीं होता है, ट्यूशन से कभी होगा ही नहीं, आपको अपना सिस्टम सुधारना पड़ेगा, और सिस्टम जब आप सुधारेंगे तो उस सिस्टम में आपको बनाना पड़ेगा कि बच्चों का टाइम शेड्यूल जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर उनका पूरा सिलेबस है तो उनको पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए या पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या उन्होंने शेड्यूल के साथ कोई टाइमलाइन भी बनाया है, और अगर टाइमलाइन बनाया है तो उसके पैरेलल एक कॉलम ये भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक टाइमलाइन बनाया हमने 3 महीने का कि 3 महीने में हम ये पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, और उसको हमने 10 या 15 स्टेप्स में बांट दिए, 10 माइलस्टोन्स हैं उसके, तो हर माइलस्टोन के साथ में ऐसा कुछ तो ऐसा होना चाहिए आउटकम जिसको देख के हम समझ जाएं कि पहला माइलस्टोन
0: कंप्लीट
1: हो गया या दूसरा माइलस्टोन कंप्लीट हो गया। अभी क्या हो रहा है कि पूरा समय निकल जाता है और जब फाइनल एग्जामिनेशन होता है तब पता चलता है कि हमने तो माइलस्टोन वन भी नहीं कवर किया था, बच्चा ऐसा ही पूरा बेवकूफ बना रहा है, या बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, या बच्चा डेविएटेड था। अगर आपको पहले माइलस्टोन पे ये पता चल जाएगा आउटकम से कि ये तो पहले ही आउटकम नहीं पहुंचा, तो आपका तो पहले दिमाग खुल जाएगा ना, आप फिर मेहनत करोगे, लड़का भी सीरियस होगा कि हमारे पेरेंट को भी पता है कि भाई हम नहीं कर ध्यान दे रहे हैं तो हम थोड़ा और ध्यान हमारा जरूरी है, नहीं तो आगे फेल करेंगे। अचानक फेल करने से अच्छा है कि हम हर स्टेप पे हमको पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो माइलस्टोन और उससे पैरेलल एक कॉलम पे आउटकम होना चाहिए डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, और ये बेस्ड होता है आपका क्या सिलेबस है और कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, उसके अनुसार आपको करना है। जैसे ही सिलेबस टाइम ये चीज़ों को बांटेंगे बच्चों का दिमाग वैसे भी खराब हो जाएगा कि भाई इतने पर डे के हिसाब से हमको इतने पेजेस पढ़ने हैं और इसके सार को हमें ग्रास्प कर लेना है। तो ये करने के लिए शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा, टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, आउटकम देखना ही पड़ेगा, और ये चीज़ें अगर चल रही हैं तभी तो आदमी सक्सेसफुल होगा।
0: सर कई बार सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जानकारी में नहीं है, जो हम माइलस्टोन की बात हम करते हैं, आउटकम की बात करते हैं, तो पेरेंट्स अक्सर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो क्या वहाँ पर स्कूल को अपना सहयोग देना चाहिए?
1: नहीं, स्कूल को सहयोग देना चाहिए और स्कूल सहयोग देने दे भी सकता है, कैपेबल भी है, लेकिन वैसे ये स्कूल क्यों नहीं दे पाते हैं ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि स्कूल पे पेरेंट को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि स्कूल जो कह रहा है उस हिसाब से। आज के समय में अगर आप इस ढंग की पूरी पढ़ाई की व्यवस्था आप पेरेंट को समझाएं और अगर पेरेंट ट्रस्ट कर रहा है कि भाई हम तो ये नहीं डिजाइन कर पा रहे हैं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल ऐसा कर रहा है तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि 100 में 95 स्कूल को भी ये नहीं पता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, किस तरीके से हम इनके लिए एक शेड्यूल बनाएं या उनको बनवाएं उनसे, और बनाना बना के दी हुई चीज़ कोई फॉलो नहीं होती है, बनवाना पड़ता है, उस उनका एंगेजमेंट ज़रूरी है। जैसे कि हर चीज़ में जब वो खुद बनाएंगे तो उसको फॉलो करेंगे, जब आप बना के देंगे तो वो नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो वैसे उस स्थिति में बच्चों को इंगेज करके उसको करना चाहिए, पेरेंट को उस पर स्कूल पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जिन स्कूलों को इसकी जानकारी नहीं है उनको सीखना ही होगा, अल्टीमेटली सीखे बिना तो कुछ होगा नहीं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, अब उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाने के लिए स्कूल को भी उतना अवेयर होना पड़ेगा, उतना लर्निंग उनकी भी होनी चाहिए, इंडिविजुअल टीचर्स का भी कि उतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो स्कूल को भी करना पड़ेगा कि टीचर की ट्रेनिंग सही करे जिससे वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए। यह ना सोचे कि हम बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो सब चीज़ गूगल में है और अब तो सारा चीज़ AI से मिल ही जाता है, तो टीचर की ज़रूरत उतना है नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन अगर देना है तो टीचर तो तभी दे सकता है कि उसको बिल्कुल आसान तरीके से उनके अंदर समझा दे जिससे कि वो सब चीज़ें आत्मसात कर पाए।
0: तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे डॉक्टर हिमांशु शेखर जी से, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियां एजुकेशन को लेकर मिली और बच्चों के करियर से जुड़ी भी बातें आपने बड़े ही आसान और सरल शब्दों में हमें बताई। सर ने हमें बताया कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर सकता है, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बताया है और आपने ये भी बताया कि बच्चे किस तरह से अपनी जो रेगुलर पढ़ाई है उसे कैसे डेविएट होकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हैं और वहां पर वो पढ़ रहे हैं और स्कूल के जो सिस्टम है उससे उनका लगाव कम हो रहा है, जबकि स्कूल वाला जो सिस्टम है पेरेंट्स और स्कूल के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बच्चे के लिए और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।
1: थैंक यू।